0: तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोर बाराही 103.8 मेगाहर्ज
1: स्टुडियो साइड
2: अहिले दिउँसोको 1 बज्यो
1: टाइम चेक को साथ में मनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस्ट चोक आफ्नै भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन्छ अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नुको साथै पुरानो गर गहना नया गहना संग साटफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301
3: Cameras, standby. Reload music.
4: नेपाली चलचित्रका गीत संगीतहरू

0: করে মাছি
1: मेरो छोरालाई बाख्रा हेर्न लाएर तँ स्कुल जाने तँलाई स्कुल नजा भने होइन तँलाई सरी म
2: मेरी छोरी कहाँ छ खुरुक निकाल
3: आमा गौतली खाए
1: बिर्सिदे अब त्यसलाई म तँलाई अर्कै केटी खोजेर बिहा गरिदिन्छु
4: लड़ने थी बेला में तो लड़न भर अब लड़े के

0: प्योइतोको थेदीमु रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्ज
1: स्टुडियो टाइमचेक अहिले दिउँसोको 4 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: Sele
1: Nyangi Goyla Yeno
2: Kanung Rose Mamhagin
0: मस्या छ्या मामु छ्या मस्या लु मामु लु मस्या मिने मामु
1: यंगी रिमथिम दिंगी जो थनलबे लागिरी यंगीला लोलोनो प्रयास की
3: कार्यक्रम आदिवासी संसार
1: रेडियो ढोरबाराही 103.8 मेगाहर्जरी
2: नाको रसेमु नजाटनी पट्ट लाफा को केरसे की हुसनी है।

0: स्टूडियो साझे
1: अहिले बिहानको 5 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्प चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना र राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठ फेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजीराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301